युद्ध बारे अफ्रीका वाले कहते हैं कि युद्ध का पहला शिकार सच होता है। चंगे विचार विचारो, जिंदगी विच लागू करो।

वक्त की पाबंदी मेहनत अते सिदक दे नाल लोहार दी वर्कशॉप कार दा कारखाना बन सकती है ठेले दा ट्रक बन सकता है खोखे वाले दी दुकान बन सकती है विचार नरेंद्र सिंह कपूर किताब डूंगियां सिखा विचारां नाल जुड़े रहो हर

0: झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इस लिए असि लैके आने तोड़े लिए ताजा तरीन सोहनिया खुशनुमा सचिया सुचिया खबर का सिलसिला। देश ते विदेश दियां खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, ते दवेगा तुहानू तुहाडे कल अज ते कल दी पूरी खबर। तुहाडा अपना हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसीं आहा।

0: लुटियां दा पीर मेरी माड़ी तकदीर रब्बा फस गई क्यों
1: तेरे मन दी मुराद बीबी पूरी करूं आज पक्का करेंगे इलाज पीछे हट गई क्यों बने तेरा काम बीबी बोलो राम राम बने तेरा काम बीबी बोलो राम राम सारे जग च

0: हरमन रेडियो हिट गीतां दी मशीन।
1: सत श्री अकाल जी, ए हरमन रेडियो है अते हरमन रेडियो दा तीसरा पड़ा चल रहा है। सन 2000 विच आस्ट्रेलिया दे सिक्की दे तुरे पिंड बुलगुलगा तो 2 घंटे दे प्रोग्राम दी शुरुआत हुई सी। सन 2005 तो लैके 8 तक सिडनी अते मेलबर्न दे विच FM दे साइड बैंड ते हैरिस पार्क स्टूडियो पैरामेटा तो हरमन रेडियो चलिया। सन 2011 विच हरमन रेडियो नू पंजाबी हिंदी दी पहली ऐप राही आईफोन ते एंड्रॉयड ते लांच करके वर्ल्ड वाइड हो गया। जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।
2: मनो जाना मनो पैसा बोलदा वीरे, जदों जेब विच होवे खून खोलदा वीरे, एह नच्चे ना बसंत।

मेहमान बारे अरब की कहावत है कि चंगी खातरदारी करने वाले का प्राहुणा ही खातरदारी करना सिखता है। विद्या विचारी ता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

सभी चलो काम से सुने जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

0: हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, हरमन रेडियो।
1: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ अमनदीप सिंह सिद्धू, डायरेक्टर हरमन रेडियो। दुनिया के हर कोने तो पंजाबी साडे नाल जुड़दे हन अते आला दर्जे दी पेशकारी का आनंद माणदे हन। हरमन रेडियो दे आस्ट्रेलिया तो सारे प्रेजेंटर मुफ्त सेवा निभाउंदे हन। तुसीं भी साडी मदद कर सकदे हो, सानूं वधिया वधिया जानकारियां भेजो अते साडियां अपणियां आईफोन अते एंड्रॉयड दीआं एप्लीकेशनस ऐप स्टोर तो डाउनलोड करके उस विच सानूं सुणो। तुहानूं रेडियो दे नाल अखबार, पॉडकास्ट, वधिया वीडियो, लेख, दरबार साहिब अते होर गुरधामां दा लाइव कीर्तन सुणन अते देखण नूं मिलेगा। ऐप विचों ही सीधा सुनेहा कल सकोगे। अज ही साडियां ऐप्स इंस्टॉल करो। धन्यवाद।

0: बड़ा समारोह भाषण नहीं भाषण नहीं हरमन रेडियो लेके आया लेके आया है कॉमेडी आवर जीतते हाथे हाथे।
1: लो भी मित्रों अजकल जिन्ने भी रिश्ते नाते ने झूठ से खड़े ने सच एक परमात्मा का नाम जेड़ा उसनु मानता है ओदे लई सच है जेड़ा नहीं मानता है ओदे लई ड्रामा क्योंकि रब है दुनिया क्रैक मैं भी मित्रों एक ड्रामा चलो जी लाल कमल जी करिए ड्रामा।

0: 24 घंटे 70 दिन।
1: एक अमरीकी कहावत अनुसार अधखड़ उम्र की हुंदी है। अधखड़ उम्र विच बंदे नूं चंगी लगण वाली हर गल जां तां गैर कानूनी हुंदी है जां अनैतिक जां फिर मोटापा बधाउण वाली। चंगे विचारां लई जुड़े रहो।

0: हारमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
1: अपनी समर्था नालों वधेरे देना मेहरबानी हुंदी है पर अपनी लोड नालों घट लेना निम्रता खवांदी है। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हारमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी जज्बात पंजाबी।

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: दोस्ती मोह दी शिखर अते अपनत्व दे वधदे एहसास दा नां है। दोस्ती मना दे अंदर पलदे सच्चे साथ नूं व्याख्या जा सकदा है। दोस्ती मनुखी रिश्तियां दा ओ फुल है जिहदे वर्गा दुनिया विच होर कोई फुल नहीं, जिहदे वर्गी होर कोई सुगंधी नहीं।

यात्रा बारे सियाने कहंदे हन कि कर बैठे बुड्ढे नालों यात्रा करके मुड़े बच्चे नूं ज्यादा कुछ पता हुंदा है। सोने विचारां दे अंग संग हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया नाल।

अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी। युद्ध बारे सियाने कहंदे हन कि जेड़ा युद्ध लई काली करदा है उस नूं ए नहीं पता हुंदा कि युद्ध मौत दा वसीला हुंदी है। सुने विचारां लई

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन
2: आए नी निहंग बोहे खोल दे निशंग।
3: इस अखाण विच निहंग सिंगां दे चरित्र दी शलांगा कीती गई है कि ओ अपनी लोड़ तों वद किसे चीज वल नहीं वेखदे।

खूबसूरत आवाज का सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे से वक्ते तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com

0: 24 घंटे 7 दिन।
1: मुस्कुराहट बारे अमरीका की कहावत है कि एक मुस्कुराहट 1000 शब्दों तो वध कीमती हुंदी है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: विरोध नाल दोवें धिरां चकन्नियां रहिंदियां ने, मुकाबले नाल दोवें धिरां विकास करदियां ने, झगड़े नाल दोवें धिरां निगरदियां ने, ते सहयोग नाल दोवें धिरां सफल हुंदियां ने। जेड़ा ढंग ठीक लगे अपना लेना। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बात पंजाबी।
2: सज्जणा दी फरमाइश ते अमन हिरदे म्यूजिक दे विच मैं दोबारा अपना गीत पेश करन जा रहा। मित्रां दी मोटर ते कच दी गलासी खड़के।
3: Yeah, back again myself, MC Special alongside K Smuck and Amon here bringing you

0: आओ सुनावा खान सियाणिया दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा, मंगी सी हेठ नूं मिल गई उत्ते नूं।
1: जद जतन तां करिए कोई वर्तन योग शै लई, अते अगों मिल जावे ओ जिस दा उल्टा पार चुकना पवे अते खेचल चलनी पवे, तां ये खान कहंदे हन।
0: मुहावरे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया।

0: अरमा रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: फौजां बारे सियाणे कहिंदे हन कि जिथे फौजां तैनात हुंदियां हन उथे सूलां ते कंडियाली झाड़ियां दी फसल पैदा हुंदी है। सोहणे विचारां लई

0: सुनो ते सुनाओ अरविंद रेडियो।
1: रीति रिवाज बारे सियाने कहंदे हन कि नवी थां दे रीति रिवाज मन्नो, जे नहीं तां उत्थों भज्जण दी करो। विद्या विचारी तां परोपकारी। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम। गुरु प्यारियो सिवनी समय अनुसार शाम दे पांच बज चुके ने, ता आओ दुनिया भर विच वास्ते पंजाबियां दे हरमन प्यारे हरमन रेडियो दी मार्फत सरवण करदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब तों बख्शिश होए अज दे हुक्मनामे दी कथा विचार।

0: फिर गुण गाए बिगसै चूके नानक भगतां सदा विगास। जिमें जिमें गुण गाउंदा अंदर खिड़ाव पैदा होंदा है, अंदर हिरदा मैं बेनती कर लगा खुशी विच भर जांदा है, अंदर एक बड़ा चाह पैदा होंदा है। फिर दिन रात अन दिन उस मालिक दे गुण गाउंदिया विगास में चला गया। पर जा आप साचे पावे, शर्त यह है जे उस सच्चे वाहिगुरु जी नू कोई पा जाए, कोई प्रवान हो जाए, तो जरा गल ध्यान च रख लियो, जेड़ा मालिक दे काबल बन जांदा है, अमृत वेला है, गुरसिखी जीवन है, सिमरन है, नितनेम है, शुभ गुण पल्ले बन्ने ने, सेवा विच जुड़े है, करते दी नज़र विच पा जांदा है, प्रवान हो जांदा है। ते जेड़ा करते दी नज़र विच प्रवान हो जांदा है, उस दी झोली विच रब लखां खुशियां पर देंदा है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। मेरे साहब जी कहिंदे ने फिर वो सिमरन करदियां करदियां अंदर हर वेले आनंदत अवस्था विच रहिंदा है जी।
1: अहंकार होमै तजै माया सहज नाम समावै।
0: इस विच शक नहीं है भी सूरज निकले ते अंधेरा नहीं रह सकता। जिथे वाहिगुरु जी की कृपा नाल सिमरन की अवस्था बन जाए, नाम चले, उथे हंकार नहीं रहिंदा, उथे होमै नहीं रहिंदी, क्योंकि होमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसा इकठाए। ये नहीं है भी सिमरन भी करता हो अंदर होमै हंकार भी रहे थे, नहीं, फिर हंकार होमै तजै माया, मायावी मोह छड़ दिंदा है, रब नाल प्यार पै जांदा है, फिर अंदर हों हों नहीं करता। वो जिहड़ा अंदर हों हों करन वाला सी वो उल्ट जांदा है, हाँ हाँ, ते ऊड़े नूं औंकड़ हों बनदा है। हुण ऊड़े नूं औंकड़ ते हाँ हाँ बन गया है, ओ तू बस कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा परका मिट गया जत देखो तत तू, हंकार हो मैं तजै माया सहज नाम समावे। अंदर टिकिया होया नाम विच इतना इकमिक हो जांदा है, बस गल सुनदा भी नाम दी, करदा भी नाम दी, कदम उठदे भी नाम दी बख्शिश नाल। ते साहिब कहिंदे ने फिर इस तरह टिकाओ नाल नाम विच लीन हो जांदा है जी।
1: आप करता करे सोई आप दे ता पाईऐ।
0: वाहिगुरु जीओ करता आप हो, सब कुछ करन करान वाले आप हो, जे तुसी कृपा करके ए रहमत कर दियो ते फिर जिसनु आप देवो ए बख्शिश, ओही झोली विच ए बख्शिश पवा सकदा है जी।
1: हर जीओ कृपा करे ता नाम ते आईए।

0: मेरे वाहिगुरु जीओ जे कृपा करो आप ता नाम ते आया जांदा है जी।
1: अंदर साचा नेहो पूरे सतगुर जीओ,
0: अंदरों धर के रब्बी प्यार विच है, दिखावे दा नहीं है, मतलब दा नहीं है। कबीर काम परे हर सिमरिया, ऐसा सिमरो नित अंदरों धर के सच्चे नाल प्यार है। दो गल्लां ध्यान च रखियो, बाहरों बाहरों नहीं है, प्यार अंदरों धर के है, ते ओ सच्चे नाल प्यार है, होर किसे नाल नहीं है। अंदर साचा ने हो ते पूरे सतगुरा जियो, पूरे सतगुरु दे राही उस सच्चे नाल उसका

अपने नाल मिला लो, मैं आप जी दे महल विच पहुंच जावां, मैं आप जी दी हजूरी विच चला जावां, सो दर आ गया हां, सो घर चला जावां, ते सो घर तो सो पुरख तक पुज जावां। ये मेरे मालिक दी रहमत ते बख्शिश धन गुरु रामदास जी अज दे हुक्म विच कीती है। आओ लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन उपदेश श्रवण।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जिड़ी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बदाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन .com.au या फोन करो 0428895564।
1: आ गया ताया आस्ट्रेलिया से ब्रिस्बेन चो। आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया आज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी थानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन ही दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामण दा। या फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। अकाल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: अपने बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: बहाने बारे सियाणे कहिंदे हन कि जिस नूं नचणा ना आउंदा होवे ओ कहिंदा है धरती गिल्ली है। सुने विचारां दे अंग

0: चाचा जी तुहानू हलवाई ते खेतीबाड़ी दे काम च कोई फर्क नहीं दिंदा?
1: कोई फर्क नहीं, ना फर्क किवें नहीं। SDM जी ये दसो कि खेतीबाड़ी च की काम करने पैंदे आ?
2: हल वाहुणे पैंदे आ।
1: ते फिर मैं भी ते यही अर्ज कर रहा कि जेड़े लोग हल नाल वाही करदे ने उहनां नू हलवाई कहिंदे ने। ते तू मठियाईआं वाले समझी जांदा।
3: वेरी स्मार्ट चाचा जी, वेरी स्मार्ट।
0: इसे चतुराई दी तां खट्टी खांदे आ।
2: चाचा जी मैं तुहाडी चतुराई दी इनू तां मनूंगा, गुआंड च मेरा 5,000 रुपया फसिया पिया, जे किते ओ कढ़ा के दिखा दो तुहानू मैं तां मनूंगा।
1: यार तू किदां दा SDM, ओ भी पंजाबी जिन्हों जेब चो पैसे भी कढ़ाउणे नहीं आउंदे। नाले तीए थो मैं क्यों पावां अपने गल च स्यापे? मैं तां सिर्फ तरीका दस सकदा, जे कढ़ा सकदा तां पैसे कढ़ावीं आपे।
2: जल्दी दसो केड़ा है तरीका।
1: मान ला तू मेरे पैसे देने आ ते मैं तेरे घरे आके लेने आ।
2: अच्छा,
1: तू अपनी अड्डी चोटी दा जोर लानी ते मैं तैनू पैसे कढ़ा के दिखाऊ।
2: ठीक है,
1: तैयार?
2: हाँ तैयार।
1: आओ फिर
2: आजो।
1: SDM जी घरे हो?
2: आहो।
1: जनाब ने 5,000 रुपया लिया सी।
2: आहो लिया सी। फिर?
1: फिर की मेरे पैसे मोड़ ते मेनू तोर।
2: नहीं मोड़दा लाला जोर।
1: मैं जुत्ती लानी है ला ते तू बाद च कहना एदी किसी लोड़।
2: जुत्ती लानी कोई खेल है?
1: मैं तेरी हुणे बना देनी रेला ते फिर ना कहीं सवारियां वेख दियां।
2: ओ वेखी जान।
0: SDM तुहानू चाचा जी दा पता नहीं, इन्हां ने थोड़े करे थोड़ा ही जलूस कढ के रख देना। मत्थे मारो पैसे।
2: ओ केड़े पैसे
1: नीलू, हुण तू पिछे हो जा। इन्हे आए नहीं मोड़ने पैसे। पैसे तो हुण मेरी जुत्तियां कढ़ाऊ।
4: हाय मर गया,
1: साला कहना मैं पैसे नहीं देने।
4: ओ बस करो।
1: पैसे क्यों नहीं देने?
4: आ ना मारो।
1: पैसे तो तेरा प्यो भी दऊ।
4: छड दियो।
1: चाचा जी ये नीलू दसदी है मैं आ की करदे हो? भाई अपनी अगराही करदे हो।
4: ओ बस करो।
1: असी केड़ा बाणियां को वही खाते भरदे हो?
4: ओ मर जागा जे।
1: असी तां फिर जुत्ती नाल हिसाब करदे हो।
4: ना मारो।
0: चाचा जी कुछ ते करो संग।
4: नीलू चाचा जी दी जुत्ती नु ब्रेक लाओ, मैं सिख लिया अगराही दा ढंग।
1: अजे किथे सिखिया?
4: आ मर गया।
1: जे सिखिया हुंदा हुण पैसे ना मोड़े हुंदे? जुतियां खान की बजाय हाथ ना जोड़े होंगे?
4: मैंने माफ कर दियो। मेरी तौबा, मेरे प्यो की तौबा। आ चको पैसा।
1: ये तो हुई ना गल।
0: हुण की स्वाद आया, 100 छित्तर भी खा ले ते गंडे भी खा ले।
4: ठीक है, हुण मैं प्रैक्टिस करांगा। चाचा जी तुसी बैठो, मैं पैसे ले आना ना।
1: भाई जिहदे कोलों पैसे लेने आ उहदे नाल तरीका अजमा। मैं तां तुहानूं समझाउणा सी तां दित्ता समझा।
3: नहीं चाचा हुण रैसल जरा तू ही करवा।
1: ठीक आ, आज वे रैसल कर लवे।
2: चाचा जी हुण जरा तैयार हो जाओ, मैं आ रहा।
1: आ जा।
2: चाचा जी घरे ही हो?
1: कल नूं आई, अज मैं नीलू दा घर आऊंगा। अच्छा आ जा, आ जा, आ जा।
2: जनाब ने 5,000 रुपया लिया सी उधार।
1: हाँ जी लिया सी, बहुत चिर दा। ते फिर मोड़ो, ओ तुसी आप नहीं लभदे, मैं सा परसों दा चक्की फिरदा।
0: चाचा जी दिस इज नॉट फेयर।
4: चाचा जी मैं चीटिंग नहीं चलन देनी, इनकार तुहानू करना ही पेगा।
1: इनकार करके मैं छित्र खाने? जद मेरे को पैसे है गया, मैं क्यों जवाब देवां? इन्ना थोड़ा तुसी मौके सर मेरा काम सारिया। नाले टाइम सर मोड़ के गाह नूं सोतो लैण वाला बणू।
4: अच्छा नीलू मैं अंदर जाके फिर पहना।
1: चाचा जी तशरीफ तो रखो।
4: तशरीफ किवें रखा, रखण जोगी तो छड्डी नहीं।

आलस बारे भारत की कहावत है कि सुती बिल्ली चूहे नहीं फड़ सकती। विद्या विचारी ता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: अर्मन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: हाय, आई एम उदित नारायण एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू अर्मन रेडियो।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com की एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ
2: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ
3: ਸੈਡ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ
4: ਸਾਰੀ

बेवफा करके भी ऐसी बेवफाई कहाँ है, जी वफा करके भी ऐसी बेवफाई कहाँ है। उन लख तरले भी कर लेंगा ना सजड़ा, उल के भी तेरे कुल वापस ना आए।

0: चौबीस घंटे सत्ते दे
1: नदियों पार मेरे माही दा डेरा मैनू भी लै चल पार कड़िया वेखण नू तुम्हें नैन तरसते मिल तई दिलदार कड़िया नीवा नीवा क्यों हुंदा जावे दरिया ठठा मारता है बेवफाई नहीं करनी चाहिए खड़के अत विच घार कड़िया नदियों पार मेरे माही दा डेरा मैनू भी लै चल पार कड़िया वेखण नू तुम्हें नैन तरसते मेल तई दिलदार कड़िया बन साथी अज साथ में पाई रो रो के सोनी पुकारती सी यार मिलावी ना खुर जावी आखा में अरज गुजार कड़िया नदियों पार मेरे माही दा डेरा मैनू भी लै चल पार कड़िया वेखण तुम्हें नैन तरसते मेल तई दिलदार कड़िया जीवन कुठरी आज ज लुठरी आ गई अजल वाली तार कड़िया नदियों पार मेरे माही दा डेरा मैनू भी लै चल पार कड़िया वेखण तुम्हें नैन तरसते मेल तई दिलदार कड़िया मेल तई दिलदार कड़िया।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लाई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

सज्जन परी तल्लका के दूर देश मत जा, बसो हमरी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला। तिब्बति आ मिल सांवलियार वे, कति आ मिल सांवलियार वे, मेरे लूलो चीख पुकार वे, त्यो कति आ मिल सांवलियार वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, ओ कतिया मिल सांवल यार वे, कुछ हरचाई की बाहों में, कुछ यार फरीद की राहों में, ओ कुछ हरचाई की बाहों में, कुछ यार फरीद की राहों में, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, ओ कति मिला सांवल यार वे, मेरे लोलो चीख पुकार वे, ओ कतिया मिल सांवल यार।

जापान दी एक कहावत अनुसार जद तक थोड़े चुल्हे च अग रहेगी उदो तक मेहमान आन तो नहीं हटणगे। लेखक परमिंदर सोढी किताब संसार प्रसिद्ध मुहावरे चंगे अते सोहणे विचारां दे जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: Harman Radio 24/7.
1: शीशे उत्ते तुड़ा जाया कंधा चढ़ी जाते ने दिल दा सांब रहे ने चले वरके पड़ी जाते ने उन्ना ता भी तुइयों रब है एता अज जवाब दिते एता वाले दिन में जड़े करन तिहाड़ी जाते ने जिन्ना ते कल लीरा पिया उन्ना वल्ल तकदे नहीं कबड़ा उत्ते तिले जड़िया चतरा चाड़ी जांदे ने रस्सी कित्थों तीक करेंगा टेड़ी उन्ना लोकां दी जेड़े एक हवेली बदले चुपियां साड़ी जांदे ने शीशे उत्ते मले स्याहिया हक है मेरे दुश्मन दा सजना नोकी की बनिया मेरे फुल लिताड़ी जांदे ने चल ओए पापा नसमी अपने पिंड नो मुंह मोड़ लईए शहर ते वसनीक ता अपने शहर उजाड़ी जांदे ने अपने शहर उजाड़ी जांदे ने।

0: हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradioaustralia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ।

0: आवे।
1: किसे नू भी प्यार हो जावे तुसी सोने ऐसे हो किसे नू भी
0: आवे। तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
2: Band of Steel Fangles.

रीति रिवाज बारे फिलीपीन दी कहावत है कि हर समाज दे अपने रीत रिवाज हुंदे हन। विद्या विचारी ता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

फुकरे वाले डेनिश दी कहावत है कि मुर्गा अक्सर बिना किसे जित दे ही मांगा दे जांदा है। सुने विचारां दे अंग संग।

तेरी मुंदरी तांबे दी, तेरे दित्ते तोहफे मेरे तो सांभे नहीं जांदे। अज फिर एक बारी अंदर वड़ के बूहा लाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा मैं अज फिर चेते आया है। उस दे विच ता अज तक तेरिया यादा घूमदिया ने, हर कोने विच नव कहंदी दियां आवाजां सुनदियां ने। खब्बी अख चो एक वार फिर अज अथरू आया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा मैं अज फिर चेते आया है। मेरे लिए ता अड़िए नी तू ही सब तो चंगी है, अजे ते किली उत्ते तेरी चुन्नी टंगी है। उत्थे बैठ फिर तेरे पसंद दा गीत चलाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा मैं अज फिर चेते आया है। कंध पुराणी दी खुड विच जो बालियां रखियां सी, तीन साल हो गए ने अज ना किसे वो चकिया ने। चमक चली गई पर रंग उदां दा उदां पाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा मैं अज फिर चेते आया है। तू ही ताए मांगट वाले दे दिल दी राणी नी, तेरी मेरी जग उत्ते बनू कोई कहानी नी। नव चंद्रे ने ता तेनू नीरू तो चाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा मैं अज फिर चेते आया है। तेरा दिता होया अज मैनू एक खत भी दिसया है, जिदे उत्ते वड्डा करके तू लव यू लिखया है। ओनू चक उठ जाके चुल्हे दे विच लाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा मैं अज फिर चेते आया है।

योग्यता बारे सियाने कहंदे हन कि अयोग्यता साडे दिमागां च कड़ियां हद्दां चों पैदा हुंदी है। विद्या विचारी तां पर उपकारी।

0: बदलाव कुदरत का खूबसूरत नियम है, सो असी बदल रहे हैं ताकि बेहतर कर सकिए। असी आ रहे हैं नवे अंदाज नाल ताकि संवाद होर खूबसूरत बना सकिए। स्टूडियो दे इस पार असी, स्टूडियो दे उस पार तुसी, आओ मिलके जिंदगी दी खूबसूरत जुगलबंदी पेश करिए। तुहाडा सहयोग साडा हौसला, हरमन टीम हरमन परिवार दे संग पूरे मन दे नाल। आखिर कुछ बेहतर करना ही था जिंदगी दा राग है।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप जी।
2: आ भी

0: विचलोकम से सुन जाओ हर्म रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया
1: Excited.

मुहावरे बारे अरब दी कहावत है कि जिमे लून भोजन लई तिवे मुहावरा बोली लई। विद्या विचारी ता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

नमस्कार, मैं हूं सनी देओल और आप लोग सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन पंजाबी स्टेशन हार्मन रेडियो। सुनते रहिए क्योंकि मेरे पापा भी सुनते रहते हैं। थैंक यू।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकदे हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149499। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।
2: लड़ते जुत करी जंगल भी देखने घोड़े

0: मैं तेरी सरगी विच इशनान करके हटिया हां, मैं तेरी सरगी विच इशनान करके हटिया हां, तेरी उड़ीक विच मैं उही वस्त्र पहन के बैठा जो मैनू जन्म सनम समय मिले सन। तेरी उड़ीक विच मैं उही वस्त्र पहन के बैठा जो मैनू जन्म समय मिले सन। मैले वस्त्रां नाल तैनू किवें उड़ीक सकदा, तेरा हाथ सूरज दी पहली किरण विच आवेगा ते मेरी नंगी देह नू छो जावेगा। देह दे रोम रोम अंदर बैठी इंद्री थरथरा उठेगी। गीता कहती है इंद्रियां तो परे मन दी दुनिया, मन दियां सेवावां तो पार बुद्धि, मन दियां सेवावां तो पार बुद्धि, बुद्धि तो अगे आत्मा है। मैं कहता आत्मा तो अगे आद जनक है, जिस चो आत्मा जन्मदी है ते सृष्टि दे अणु अणु विच वंडी जाती है। तू आ तेरी छूह दी, तेरी छूह दे जग दे बुझ दे अणुआ विच आद जनक। तू आ तेरी छूह दे जग दे बुझ दे अणुआ विच आद जनक है, ते मेरा आद अंत भी, ते मेरा आद अंत भी। उत्तम होन कोई नहीं पुछदा कमजोरां ते अपाहजां नूं, घबराओ ना इस मौत तो क्योंकि जो प्यार दी मौत नहीं मर सकता वो एक तुरदी फिरती लाश है।
1: ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा
1: आखांती नू सुनावा नू नू। इस दा मतलब है कि जदों किसे नू कोई गल असिद्धे रूप च कही जावे।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसे भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

यात्रा बारे अरब की कहावत है कि लंबियां लत्तां वाला सफर जल्दी पूरा करता है। सुने विचारां लई सुनते रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।

अरदास। किरना बांगर नंगे हो इक अंगे इक रंगे हो पावन जमना गंगे हो रावी चना तरंगे हो नेमन सूड़े जंडे हो गुंदे फुल कदंबे हो गिरी गवर्धन कंगे हो बेरी साहिब कंडे हो सरपा मणिया चंदे हो वन तित्तर दे खंबे हो मूल सवास मकंदे हो सूड़ी ते लटकंदे हो पीड़ा बजदे कंडे हो अगन कुंड पर चंडे हो अर्क बर्क सहरंगे हो हर चंदन पर संगे हो खाकी पोष पतंगे हो बल बल मरे पतंगे हो तूते मैं जगदंबे हो चंगे हो मंदे हो आपा मिलिए बंदे हो आपा मिलिए बंदे हो।

0: में तीर्थ है यात्रा के लिए, पिता बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए।
1: शहीदी दे के ऐसी खुद नु भी हैरान करदा हां, शहीदी दे के ऐसी खुद नु भी हैरान करदा हां, मैं अपने शीश नु सिर वास्ते कुर्बान करदा हां।

अज भी बड़ा चंगा होवे के बाणा धारण करन तो पहला ही सिख दे अंदर बाणी बसी होवे। तुरदिया ही पता लगे के ओ सिख बाणे वाला जा रहा है जिसके अंदर सतगुरु बाणी दे रूप विच है ते बाहर बाणे दे रूप विच। गुरु दियां सिफतां नाल साडा प्रेम बने फिर सानू गुरपुरबां ते ए आवाजा ना देनिया पैणगियां के सतगुरु एक वारी फिर आ जा, गुरु दे दर्शन करन वास्ते बाहर ना भटकना पवे। सगों दीदार खालसे दा ए वचन याद आउणगे ते गुरपुरब मनाण आए गुरु दे सिखां विचों ही गुरु दे दर्शन होणगे। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

सौ पचहत्तर तो 1699 तक 24 साल की तैयारी उपरंत सतगुरु ने अपने फरमान नूं अमली जामा दिंदिआं खालसे दी सिरजना कीती। सतगुरु ने दया तरम हिम्मत साहिबी ते मोहमी नूं एक थां इकत्तर करके गिदड़ां नूं शेर बना दिता। पैरां नूं बहादुर ते पीड़ियां नूं बाज बनाउण वाले अगमी कौतक दा जिक्र इउं पेश कीता जा रिहा है।

0: ਲਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।
1: इतिहास दसदा है कि हमायूं बादशाह शेरशाह सूरी पासों हार के जदों पंजाब विच आया ता अनेका फकीरां पासों हुंदा होया ओ गुरु अंगद देव जी दे पास खडूर साहब भी पहुंच गया। राजे जदों ताकत विच हुंदे हन ते उस वेले ता इन्हां नूं रब याद नहीं आउंदा, पर जदों उसदी नजर उपट्ठी हुंदी है ता इन्हां नूं भटकदे वेखो, फिर इन्हां दी निमरता वेखो किवें फकीरां दे डेरियां ते जाणगे अरदासां करनगे। पर एक कदी ना भुल के समझ लेना कि राजनीतिक बंदे दी ए निमरता सच्ची है, नहीं राजनीतिक बंदा इन्ना होशियार हुंदा है कि ओ हमेशा दूसरे नूं वरतदा है। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

0: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसे भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ

कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती मां कवन, जित हुआ आकार।

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाए आखन पा।

नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवे अमूल ले जाए अमूल पाए अमूला समाए अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान अमूल बख्शीश

ता आख न सके के इके जे वड पावे ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विगान ता लिखिया सिर गवारा गवार सो दर के हा सो कर के हा जित वह सर्व समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वामन हारे केते राग प्री सो कहियन केते गावन हारे गावे तुमनु पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति स्थिति संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न ईश्वर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावे रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे जोध महा बलसूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुनु गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेख है कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सहा पत साहेब नानक रहम रजाई मुंडा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करो बभूत खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसे आदेश आज अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भूत ज्ञान दया पंडारन कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी।

हर का सिमरन सुन मन कानी सुख पावे हर द्वार पुरानी। रागौड़ी विच पंचम पातशाह दे ए बोल साडे लई बड़े लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। साडा अध्यात्मक जीवन संवर सकदा है। हर का सिमरन सुन मन कानी इन्हां कन्नां राहीं हरी दा सिमरन सुनिया कर। ए सरवनो मेरे हो साचे सुनने नूं पठाए। सच की है हरी दा सिमरन ते ओ सुनिया कर सुख पावे हर द्वार प्राणी उस मालिक दे द्वारे ते कबूल पाएगा। लोक ता सुधर नहीं है तेरा परलोक भाव प्रभु दा दर भी संवर जाएगा। उत्थे भी आओ बैठ आदर सब दियो उत्थे भी तेनू सत्कार मिलेगा। ता आओ गुरु प्यारे हरी दे सिमरन विच जुड़ना करिए। इन्ना सरवणा राही हरी जस सरवण करिए।

मेरा चित्त न चले मन भयो पंग रहाओ। ए पवित्र शब्द श्रोमणी भगत रामानंद जी की रचना है। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र अंग 1195 उपर राग बसंत विच दर्ज है। इस शब्द नूं सरवण करन तों पहलां आपां थोड़ा जिहा भगत रामानंद जी बारे जान लईए। भगत रामानंद जी भगत कबीर जी दे समकाली ते समशहरी भगत होए ने। दोनों का आपस विच बड़ा ताल मिल रहा है। भगत कबीर जी भावे उस समय कही जाती अखौती नीवी जात विचों सन, इधर भगत रामानंद जी ब्राह्मण जाति नाल संबंध रखते सन। बहुते विद्वान लोग जेड़े ने भगत जी नूं आम ब्राह्मण वांग ही मूर्ति पूजक अते वेदांत मानते उपासक मानते हैं। भगत जी भावे के हमेशा पीले वस्त्र पहनते सन, ते कईआं श्रद्धालुआं ने इस तों ही भुलेखा खा लिया होगा कि वह विष्णु जी दे उपासक सन, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी दे श्रद्धालु ही पहनते हैं। इस शब्द बारे कुछ होर कहन तो पहला यह भी गल क्लीयर कर लीए कि भगत रामानंद जी का इको एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। गुरु पातशाह ने जब बाणी एकत्र कीती है, हो सकता है उन्होंने श्रद्धालुओं को, क्योंकि गुरु काल तो पहला हुए ने भगत कबीर जी भगत रामानंद जी, इको ही शब्द उन्होंने मिलिया हुए। तो भगत जी ने होर भी काफी बाणी उचारण कीती होगी, पर इस शब्द विच जे आपां वेखिए तां भगत रामानंद जी ने हिंदू कर्म कांडां ते बड़ी चोट लगाई है। जरा ध्यान नाल शब्द नूं वाचना पैना है। उस समय दे मौके दे धार्मिक आगुआं वल्लों जिहड़े भुलेखे पाए गए सन मूर्ति पूजा दे तीर्थ स्नान दे, इन्हां नूं दूर करन दी कोशिश कीती गई है। वो कहिंदे ने कि पूरे गुरु की शरण पिया ही साडे जन्मां जमांतरां दे मंदे कर्मां दी मैल जिहड़ी है दूर हो सकती है। उन्होंने अपने शब्द विच ब्रह्म अल्फाज वरत्या है, भाव अकाल पुरख। ते कई सज्जन भगत जी दे इस इको एक शब्द विच ए भी गल नोट करदे ने कि वह शायद ब्रह्म दे पुजारी होंगे, पर साडा मनना है कि उन्हां दी भगत कबीर जी समेत होर भी कई भगत जनां नाल सांझ बनी होएगी। वह जरूरी है कि बाकी भगतों के नाल मिलके वो अध्यात्मक प्रचार करते हो, जिवें बाबा कबीर जी ने किया है। जे उन्होंने एक शब्द बारे सोचिए कि उन्होंने एको ही शब्द उचारिया होगा, नहीं, ये गल प्रचार की है, आत्मक अवस्था की है। किसी महापुरुष की आत्मक अवस्था जिहड़ी है ना, उहदा मापदंड उहदी बाणी उहदी रचना की गिनती नहीं हुंदा, क्योंकि जे इस गल नूं लवांगे तो छेवें अठवें सत्तवें गुरु साहिबान ने एक भी शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं है उन्हां दा, पर उन्हां दे समें विच जो अध्यात्मक प्रचार होया, सिक्खी का प्रचार होया, वह बहुत ज़्यादा सी। खैर, इस गल नूं लांबे करके आओ गुरमुखो सरवण करदे हां भगत रामानंद जी दे बख्शे हुए शब्द नूं। ते शब्द गायन कर रहे ने हजूरी रागी भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी। कत जाए

पज पार ब्रह्मंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसार। रागास्ता विचों धन गुरु अर्जन देव पातशाह दे पवित्र बचन कि जे तू अपनियां सियाणपां छड के, क्योंकि मनुख दियां सियाणपां किसे लेखे विच नहीं हन, सहज सियाणपां लख होए ता इक न चले नाल, तो अपनियां सियाणपां छड़ दे, सिर्फ परमात्मा दी बंदगी लग कर, भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो। सियाणपां नाल असी दुनियावी पदार्थ लोचदे हां, ते सच्चे पातशाह कहिंदे जे नाम नहीं ना तेरे पल्ले, सगल दिसै इशार, ए जिन्ने भी दुनियावी पदार्थ जो मालिक दे रहा है, इशार भाव सुभा रूप ने, इन्हां दा कोई मुल नहीं है। जे नाम है ते संसार दे पदार्थां दे विच विचरना, संसार विचों उन्हां नाल मेल जोल रखना, वह सब कुछ सफल है। पर जे नाम पल्ले नहीं है ता तेरा इस संसार दे विच आउना, संसार दे जीवां नाल विचरना सब अजाई है। ता आओ उस सच्चे मालिक को नाम दी दात मंगिए, ए शब्द राही उस अकाल पुरख के चरणा नाल अपनी प्रीति जोड़िए।

0: विचार नाम दी, विचार शब्द दी, विचार अखुट खजाने दी, विचार महान उपदेशां दी, विचार दृढ़ता दी, विचार आत्मक अडोलता दी। प्रोग्राम गुरबाणी विचार विच रोजाना तुहाडे अपने रेडियो हरमन रेडियो ते वधेरे जानकारी लई लॉग इन करो harmanradio.com ते।
1: आदि पूरन परमात्मा आदि समय तो है, मद पूरन परमात्मा हुण भी है, पूरन है, अंत पूरन परमेश्वर है। संस्कृति विच रचिया इस श्लोक जैसी दीवार दा पहला श्लोक है। तो सतगुरु कहिंदे उस संसार दे अंत विच भी पूरन होएगा और उस परमात्मा दी बंदगी करके उदा नाम सिमर सिमर के संत जन गुरमुख जीव तरदे ने। सिमरंत संत सरबतर रमणन नानक अगनासन जगदीशर। गुरबाणी दे इस अथा समुंदर दे विच ए जो पवित्र श्लोक 705 अंग उपर दर्ज है। कई बार कई जीव जा पाठी सिंह इस नूं गुरबाणी दे मध दा श्लोक गिन लैंदे ने, पर असलों ए परमात्मा दे बारे वर्णन है कि उह सदा पूर्ण है। इस करके उस परमात्मा दी पूर्णता जो वर्णन है सतगुरां ने इस श्लोक राही कीता है। आपां भी इन्हां वहमां भरमां तों बाहर आके उस पूर्ण परमात्मा दे आओ गुण गायन करना।

0: आप जी वडभागे हो जो रोजाना अमृत वेले हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया राही गुरबाणी अति गुरमत विचारां दी शहर विच करीब तीन घंटे गुड़ चुंदे हो। गुरबाणी साडे जीवन दा आधार ते उधार है। मनुख मात्र लई गुरबाणी गाड़ी राह है। साडी अकाल पुरख मालक अगे दोवें हथ जोड़ के बेनती है कि आप सब स्रोतियां दा अज दा ए शुभ दिहाड़ा गुरमत दी सोझी दे नाल नाल खुशियां खेड़े लेके आवे। इसे शुभ भावना दे नाल अरदास करदियां मैं दलजीत सिंह आप जी कोलों प्रोग्राम दी समाप्ति दी इजाजत चाहुंदा हां। उस मालिक ने चाहिया तां कल सवेरे अमृत वेले आवाज दी दुनिया राही आप जी नाल फिर तो सांझ पावांगे। रब राखा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। आज ताया जी वेलकम।
2: ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू।
1: ओ मैं आ ता गया मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। ऐसो किसो मिलू इंडिया आले गद्दे।
2: लो ताया आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो।
1: पंजाबी फर्नीचर?
2: जी हाँ पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा सारा इंडियन फर्नीचर। जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे धार्मिक फोटवां चादरां साइकिल चूल्हे दातियां रंबे कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी
1: लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा। ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੀੜੇ ਲੈਤੇ ਸਾਹਮਣ ਦਾ।
2: ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਿਖਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ। ਲਿਖੋ ਫਿਰ 2A130 ਕਿੰਗਸਟਨ ਰੋਡ ਅੰਡਰਵੁੱਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਅਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਇਆ ਜੀ 0404000536 ਤੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ punjabifurniture.com.au। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ @ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ।
3: रोटी हजम नहीं होंगी वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन लड्डुआं दी स्पेशल बेसन मल्टी ग्रेन आटा काबली छोले मसरां दी दाल चना दाल सोयाबीन ते बदाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो gorewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
4: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
0: दुनिया भर के सारे मुकद्दस स्थानां विचों श्री दरबार साहिब अमृतसर एक विलखण थां रखदा है जिसका जिक्र करदियां वड्डे वड्डे ग्रंथ रचे जा सकते ने। गल भाई गुरदास जी दे बोलां तो शुरू करदे आ तां भाई साहिब कहिंदे ने पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै उल्टा खेल खसम दा उल्टी गंग समुंदर समावै। अमृतसर दा शाब्दिक अर्थ है अमृत दा सरोवर। अमृत सरोवर तो इस पवित्र शहर का नाम ही अमृतसर साहिब पै गया। जो धन गुरु अमरदास जी के हुक्मां नाल चौथी पातशाही धन गुरु रामदास जी ने

ती फिजा सरगर्श की कर दे हुई स्वेट डी ताज के संग ताजा खबर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मनमोहक संगीत सेहत संबंधी सिलसिले मुलाकातों का दौर अति सरगोशियां मालबंतो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो दे प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक।

झूठ चढ़ जाए पच्चड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पच्चड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इसलिए असि लैके आने तोड़े लिए ताजा तरीन सोहनिया खुशनुमा सचिया सुचिया खबर का सिलसिला। देश ते विदेश दीआं खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, ते दवेगा तुहानू तुहाडे कल अज ते कल दी पूरी खबर, तुहाडा अपना हरमन रेडियो।

तड़के नित ही पकाएंगी तंदूरनी। सुन लैनी चंडीगढ़ वालिए, और तेरे होने संगरूरनी।

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: सलाह बारे फिलिपीन दी कहावत है कि जेड़ा सलाह मशवरे करदा रहे वो गलती कट ही करदा है। विद्या विचारिता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

इतिहास बारे कलिंगोन अनुसार इतिहास जेतुआं दा लिखिया हुंदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

जे असी अपने विरोधिया दे बोलन दी आजादी विच यकीन नहीं रखते तां समझो असी बोलन दी आजादी विच मूलों ही यकीन नहीं रखते। नोम समस्की सुने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लाई तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लाई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लाई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com दी एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।